गायने गीतान चले अदरत मांकर मलोक मवार द मावत तमत के करला आट आदरे कर पुए का क्या निकटा आदरे करने कोटे तमान वे टिकें टिका हाई मिवेनो अकेला मामे देने गे नहीं टिए ना और आगे ही नावे वेनो वेन मागे कांदलो हंगा गे नहीं टिया और आगे सत्र वेनो वेन मागे ही ना किंगे के मिही दांकला अवसाने ही मिवने और आवित रखने वे अवसाने आई मिवने और आवित रखने वे मठत मावा ही मिवना देन कन्नाडी सराट गिहिन बैलू अत पेन मागे मुन वितराय एत अतुले हिटपु ए आदरे विश्वास करपु मानुस्य काले गेट काली में मेरीला ओया मावा में तक कर दावसे मागे लोके न तरुने न नमुत ए दावसेन पास मागे हदवत्र की सिम दावसक संपूर्ण वुने न है मांकर पुलोक में वाले दो आट आदरे कर पेकना वे मागे मुलु जीविते मो आगे नम टलियल दीला अंतिम टमाटी तिरुने माओ महादुने गान बेरी हिस मानस सेक वीमा मांग ले रंगना लसन हादवात तमाई गुडाक मरी देने तारंगा मांग चमरे मागे में के नेकुनु या आहंबे मागे जीविते टा आवे मागे हम दे में वेला कटिन में मागे अप्पाच्ची वेला मागे इतासरे ही नीट रिंग गत्ते या अद मागे आत्मे में वेला मांग नेत्रांजलि आदरणीय तरंग किसीम के ने कुछ आदरे करने के लिए सीन है तरह न दवस्ती न आनी है न वेला वाले न वा हितरी दन महोत्त वाली है न वा अतारी ने न तो इवसला तेरुंगा रगे न आदरिंग इन मट पुलो आंग ए नुम्ब मा तमागी ऐ नुम्ब की जीवित लासन कर गया न ने मान तरह न वह जीवित दीना न मंदुरिंग इन ओया इंदिं सत्रिंग इन मागे आदरे ये विधि हट मत ये भी तो रिंग इन्दम बालांग इन्दम माँ रत्न पुरेंगे रेशा लाबने आत में वात माव दाले अन्न इपाक ये ले आड़ किया अन्न तरंगा के बालांगों डिंग सुधुना होना